आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: 5:42 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे। अयोध्या के सारे निवासी एक टक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि के तदनुसार 25 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

बारे में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। ठीक 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 7 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। आठ बजे जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। नौ बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। और ठीक 10 बजे आप एक बार फिर से सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10 बजकर 5 मिनट का समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का। ग्यारह बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 11 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। और ठीक 12 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 5:59 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

डायबेटिक समय विक्टिम कम्पेन्सेसन दिबलि वान स्टप सेन्टर सर्भिसेस लगा जाननी उठाइ दिबलि आरो डिस्ट्रिक्ट टेलिकम कनेक्टिभिटी सुधार करि दिबलि कयसे नागालेण्ड एडवाइजर फर सी ए डब्ल्यू डि कतिचु खामोब्रा एल्डरलि मानु विडोज आरो पि डब्ल्यू डिस लगा डेटा ठिक राखिकेना वेलफेयर काम ताकत करि दिबलि दरकार जनासे मिटिंब्रा अलग अलग स्किम्स निचिदि काम भराइ थाकिया खान चाइ जासे आरो डेपुटि कमिशनर रसितो नियथेब्रा जाननी पढ़ाइकेना डिस्ट्रिक्ट पक्सो केसेस लगा रिपोर्टिंग उठाइ दिबलि कयसे मिटिंब्रा सुटिक दा ट्री प्लांटेशन ड्राइव टु राखिसे Our Department of Animal Husbandry and Veterinary Services, Bara Bhandari Subdivision, Wokha District, Nichidikta Awareness Campaign to National Livestock Mission, NLM, 2025-26 Nichidik Livestock Insurance Scheme, di, Mirabani Bosti and Bhandari Town, di, Olop Agidi Somoy Rakise, Deputy Director Department, Dr. Kwanzelo Tipra, Livestock insurance for Ajanak Naksan Korea Kilavi Panjai, Pachai Dibali, Aru Livestock Management Adat Khan, Sodha Kori Dibali, Faida Khan Janai Dise. Taibra insurance coverage laka procedure di documents aro GPS based livestock photography dorkar thakya Janai Se. Kisan Khan Lokoti scheme bra, insured livestock karone compensation diabi Janai Gina, free basic veterinary aids Khan Bhakori Dise. আৰু ইটো লগত আজি ফুজৰ লগা খবৰ ইমান ডিচেজ কৰি আছে শুনি থাকিবি সামসাদ বাজি দাস মানে নাগামিজ খবৰ আনি দিবলৈ আছে

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी

0: वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधान

0: दुकानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित

0: Well, my dear friends, I'm going to go to the next caller. Hello?
1: Hello?
0: Hello, who is on the line?
1: Ji, namaste.
0: Namaste, kon bol raha hai?
1: Prem Singh Sisodia bol raha hu, Gram Bachoda, Tarsin Nagda Jila Ujjain se.
0: Okay, Prem Singh Ji, program mein swagat hai. Aur bataiye, aaj kaun sa wala geet suna jaunga?
1: Ji, aaja tujhko pukare mere geet. Ye gaane ke bol hai.
0: Aur film ka naam?
1: Geet.
0: गीत
1: हाँ जी
0: अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ ये वाला गीत मेरा पास है ना नहीं गीत का फिल्म से बांसुरी बजाए के एक है जिसके सपने एक है जो दिल जो दिल में बसाए एक है लैला मंजू एक है मेरा मेरे मितवा मेरी मित्री
1: एक हाँ, है, ये वाला
0: ठीक है मतलब ऐसा होता है ना प्रेम सिंह जी यहाँ में जो टाइटल सॉन्ग दिया है ऑफिशियल टाइटल सॉन्ग दिया है इसके अलावा आप अगर अलग टाइटल सॉन्ग बोलने से हम लोग धुनने में बहुत दिक्कत होता है
1: क्या होता ना है मेरी बात सुनिए आप
0: जी
1: कुछ हमें भी मतलब गाने की लाइन सही याद नहीं होती है ना
0: जी
1: बीच में से कुछ गाने याद होते हैं तो हम उसी को बता देते हैं आपको तो थोड़ी सी परेशानी होती है
0: इसलिए बहुत परेशान
1: होता है हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि आपको परेशान करें हम तो यही कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी गाना हमें निकाल के सुनवा सके और हम यहाँ पे गाना सुने बताइए मौसम कैसा है आपके वहाँ पे
0: हाँ मौसम एकदम बढ़िया है और वहाँ पे कैसा है
1: जी यहाँ पर भी कल बारिश हुई है और अभी ठंडा मौसम हो चुका है
0: क्या बात है
1: काफी मतलब गर्मी झेली हमने 43-46 डिग्री टेम्परेचर झेला लेकिन अभी तो ठंडाई हो गई वातावरण में
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा खबर है तो सुनिए आज इसका अच्छा खबर का साथ ये वाला गीत और किसी का नाम लेना चाहूंगा
1: जी बिल्कुल भगवान सिंह परमार आशुतोष अविनाश संगीता जी और आपके लिए डेडिकेट रहेगा साथ में असम से हैं भाईकोन मुंडा और विमल अमल दोनों को रहेगा ये गाना
0: अच्छा ठीक है प्रेम सिंह जी आप एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ एक बात
1: जी
0: कि आप ये वाला लाइव फोन इन प्रोग्राम वाला ज्यादा सुनता है या पूरा प्रोग्राम सुनता है
1: फोन इन प्रोग्राम जब होता है ना उसको तो हम पूरा सुनते हैं लेकिन दूसरे कार्यक्रम में इतना नहीं सुन पाते क्योंकि उसके अलावा हम काम करते हैं खेत में उसके बाद में भजन प्रोग्राम में भी जाते हैं तो थोड़ा कम टाइम मिलता है
0: यस
1: लेकिन फोन इन प्रोग्राम तो पार्टिसिपेट करके ही सुनते ही सुनते हैं
0: ठीक है तो थैंक यू सो मच प्रोग्राम में हिस्सा बनाने के लिए और सुनिए आपका
1: जी
0: रिक्वेस्ट
1: और एक और हमारे दोस्त है तनुश्री महाराष्ट्र से
0: हाँ हाँ ठीक है
1: हाँ जी
0: थैंक यू बाय
1: थैंक यू सो मच ओके बाय
0: तो माय डियर फ्रेंड्स अमी खनलागा रेगुलर लिसनर था किया से उज्जैन मध्य प्रदेश पर ब्रेम सिंह ससुदिया ताई रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमी खन हुनी अब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर वस्ते गीत फिल्म ब्रा 1970 साल का फिल्म था किया से म्यूजिक दिसे कल्याण जी आनंद जी लिरिक्स अनंत पक्षी

0: Well, my dear friends, I've got Disco Dancer film, bra. Which I've been thinking about the guitar on the show. Or the next caller, I'm going to take a Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes. Kun kuya se?
1: Good afternoon, sir.
0: Good afternoon. Kun kuya se?
1: Me Gulaghata Sam se Sabina Begum bol rahi hu.
0: अच्छा सबिना बीकाम प्रोग्राम में स्वागत है और पता है आज कौन सा वाला गीत सुना जाऊंगा
1: जी प्रेम मूवी है
0: प्रेम
1: जी
0: जी मैं देखता हूँ प्रेम मूवी है कौन सा वाला गीत
1: कभी हंसते हैं कभी रोते हैं
0: ये वाला मेरा बस नहीं है इसमें ये वाला है मैंने जी लिया मार लिया प्रेम कर लिया
1: हाँ जी जी ये बजा
0: दीजिए ये वाला
1: जी थैंक यू सर
0: अच्छा और पता ये किस किस को ये टिकट करना चाहूंगा
1: जी खासकर आपको
0: थैंक यू
1: और सभी सुनने वालों को
0: अच्छा
1: और मेरी फैमिली को
0: ओके ठीक है तो थैंक यू सो मच सबिना बेगम आपसे बात हुआ अच्छा लगा सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग
1: थैंक यू सो मच
0: यू वेलकम बाय तो माय डियर फ्रेंड्स सबिना बेगम फ्रॉम गोलाघाट असम मिखन लगा रेगुलर लिसनर थकी से ताई तो ही आज लगा लास्ट लगी कॉलर थकी से और ताई रिक्वेस्ट कर लगा गीत मिखन ये हुनी अब ब्रेम फिल्म ब्रा अलका यक्निक नलिन देव गुआ गीत और कॉरस हुनी कि ना एंजॉय कर भी एंड हैव अ ग्रेट आवर्स अहेड माय डियर फ्रेंड्स तो पिछला अपनी कन एफएम ट्रगबन न्यूज हेडलाइंस त्या हुनी पाओ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था।

न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, एक बार फिर से मैं दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन हूँ आपके साथ लेकर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। न्यूज ऑन एयर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम आपके नाम, वैसे तो हमारा हर कार्यक्रम आपके नाम है, लेकिन ये है रिक्वेस्ट बेस्ड प्रोग्राम, यानी आप अपने पसंदीदा गानों की रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, ये है 9868107070 9868107070। तो इस नंबर पर भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। और पहली रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है कविता की। कविता उत्तराखंड से हमारी श्रोता है और ये सुनना चाहती हैं गाना ये वाला।

श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म रामलीला से ढोल बाजे नगाड़े संग ढोल। वैसे मैं क्यों गा रही हूँ, आप सुन ही लीजिए। तब तक आप भी अपने रिक्वेस्ट तैयार कीजिए और मुझे भेज दीजिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.66 की ये फ्रीक्वेंसी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ दिल्ली के चाशनी गणेश रजन और आप भी अपनी रिक्वेस्ट कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। अगली रिक्वेस्ट मैंने क्यू की है राजकुमार संतानी जी की, जो कि अकोला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता है। ये सुनना चाहते हैं व्हाट इज मोबाइल नंबर, गोविंदा और करिश्मा की धमाकेदार जोड़ी। और ये गाना लीजिए आपके लिए।

0: गाने को अपनी आवाज दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने, फिल्म है हसीना मान जाएगी।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235।

पास लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे तो हमें लगभग सब इम्पोर्टेंट नंबर्स याद हो जाते थे, लेकिन अब क्योंकि किसी का भी नंबर है हमने एक बार मोबाइल में सेव कर लिया, हम समझते हैं अब ये सेफ है हमारे पास, हम उसे याद ही नहीं करते हैं। अपना नंबर और शायद किसी स्पेशल वन का नंबर हम फिर भी याद करते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो ऐसे में पूछना तो बनता है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली के चाशनी कुरे सृजन। आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद फिर वापस आती हूँ आप सभी के साथ।

0: माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष ID मिलती है। यह ID आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही ID दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
9: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। अगली रिक्वेस्ट भेजी है गुड्डू धाकर जी ने, मध्य प्रदेश उज्जैन से हमारे ये श्रोता हैं। कह रहे हैं बारिश हो गई है हमारे यहाँ शुरू और कोई बारिश का गाना। अभी खेत में बोनी चल रही है, बुआई चल रही है मक्का, सोयाबीन और मूंगफली की, तो कोई गाना ऐसा हो जाए जिसमें बारिश की बूंदें आ रही हों। तो लीजिए।

0: माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, कमलेश ने उत्तम नगर से। ये हमारा श्रोता परिवार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। और इस गाने की रिक्वेस्ट, जैसे मैंने बताया, ये हमारा खोरवाल परिवार है, बोधराज, कमला, गीतिका, भानु, उत्तम नगर दिल्ली से हमारे श्रोता। आप भी अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। सुनते रहिए प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम सुन रही हैं आप मेरा वाला सॉन्ग, और एक और श्रोता परिवार जो हमसे जुड़ा हुआ है ये है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति, किशु, ये सभी रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे श्रोता हैं। लीजिए आपकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं और 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। और लीजिए एक और फरमाइश पूरी करते हैं, एक और सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे पास आई है सूरज कुमार शाह की, जो कि घाघरा बाजार डिस्ट्रिक्ट उदगलगुरी असम से हमारे श्रोता हैं और ये सुनना चाहते हैं गाना। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, तुम पर हम हैं अटके यारा।

इसी गाने की रिक्वेस्ट करते हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।

कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी और मैं हूं दिल्ली के चाशनी कुरेश रचन आपके साथ। दो सॉन्ग रिक्वेस्ट मैंने नेक्स्ट क्यू कर ली है। पहली है हमारे पास आई पुनीत रावत की ऋषिकेश से, ये सुनना चाहते हैं सुहाग फिल्म का गाना गुरे गुरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। एक और रिक्वेस्ट मैंने क्यू की है, ये है फिल्म पीके से और चार कदम बस। ठीक है, ये गाना हमने भेजा, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है सुरजीत ने, जो कि ग्रेटर नोएडा से हमारे श्रोता हैं। तो बैक टू बैक इन दोनों सॉन्ग्स को मैं प्ले करूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा ब्रेक, मैं यूं गई और यूं आई।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रेज सृजन। और इस आर का ये है लास्ट सॉन्ग, रिक्वेस्ट भेजी है हमें परमवीर कुमार ने, जो कि बिहार मुंगेर जिला से हमारे श्रोता हैं। तो श्रोता दोस्त, आप इस गाने को सुनिए और मैं बता दूं कि अगला प्रोग्राम कौन सा है। तो आप अगला प्रोग्राम आशियाना सुनेंगे शाहिद के साथ और यहाँ विषय है फिल्मी दुनिया के कुछ अनजाने किस्से। अतिथि हमारे साथ है गौरव द्विवेदी, जो कि फिल्म पॉलिसी निर्माता और फिल्मों के गहरे जानकार हैं। तो जरूर सुनिएगा हमारा अगला प्रोग्राम और उसके बाद रेडियो डॉक्टर समय रहेगा 3 से 4 का। विषय है स्पेशल ऑन वर्ल्ड विटिल्गो डे। एक्सपर्ट डॉक्टर अनन्या शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एम्स नई दिल्ली से हमारे साथ होंगी इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने दोस्त दिल्ली की चाशनी कुड़े सृजन को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना यहाँ पर हो गया है शुरू और आपके साथ हूँ मैं, मेरा नाम है शाहिद और आज का प्रोग्राम बहुत ही है खास। आज का प्रोग्राम खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जो हमें बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ अनसुने अनजाने किस्से कहाँ के फिल्मी दुनिया के। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान आशियाना के गौरव द्विवेदी जी से जो हैं इंडियन पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट फिल्म पॉलिसीज के प्राइमरी आर्किटेक्ट श्री गौरव द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बातें कहने का मौका दिया।
0: जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे, आपने समय निकाला और इस तरह की पर्सनैलिटीज जो आती हैं हमारे शो में तो हमारे लिसनर्स भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे वो फिल्मी दुनिया से बात करने वाले हैं। चूंकि आपका जो इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है फिल्म पर्सनालिटीज के साथ

0: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और स्टेट फिल्म पॉलिसीज के भी आप जो है मेजर, बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट रहे हैं, उसके निर्माता, उसके बारे में बताइए
1: जी। बस मेरा बैकग्राउंड है कि मैं लखनऊ से मैं बिलोंग करता हूँ
0: जी।
1: 10-12 साल मैंने जर्नलिज्म में गुजारे, जी न्यूज़, आज तक वगैरह में काम किया। सिनेमा का शौक बचपन से था, फिर उसके बाद मैंने एक सबैटिकल लिया तो मैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी का सीईओ भी रहा।
0: अच्छा।
1: तो कुछ टाइम तो उससे मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी और बढ़ गई सिनेमा को जानने। फिर जब सरकार की तरफ रुख किया तो मुझे उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद को उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो वहाँ हम 2015 में उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म पॉलिसी जो बहुत लैंडमार्क मानी जाती है
0: जी,
1: जहाँ सब्सिडी देना और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना
0: ओके,
1: और स्टेट को जो है उस तरीके से ब्रांड करना,
0: यानी कि
1: पहली जी
0: हाँ। यानी कि स्टेट को जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनको इन्वाइट किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े,
1: स्टेट में जो शूट करें हमारे लोकल एक्टर्स उनको एम्प्लॉय करें, और हमारे यहाँ जब शूट करें तो जो खर्चा होता है रहने में, खाने में, होटल में, गाड़ी में, उससे जीएसटी का स्टेट का
0: exactly.
1: फायदा होता है। प्लस जो शूट हो रहा है जब आप फिल्म देखते हैं
0: OTT
1: पे देखते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको लखनऊ या उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जो है शहर या वहाँ के ब्यूटी स्पॉट देखते हैं
0: जी, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है।
1: तो सिलसिला बढ़ता रहा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में काम करने का मौका मिला, वहाँ की फिल्म पॉलिसी बनाई।
0: अच्छा।
1: फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में 5 साल रहा मैं सलाहकार वहाँ पे सरकार का, तो वहाँ भी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी का जो है काफी चैलेंजिंग था
0: जी,
1: क्योंकि छत्तीसगढ़ को समय लेके परसेप्शन जो आज तो अमित शाह जी ने नक्सल मुक्त कर दिया
0: जी जी जी
1: मंत्री जी ने, बट उस समय लगता था कि आप रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो कोई उठा के आपको नक्सल ले जाएगा तो बड़ा चैलेंज था, बट बखूबी हम लोगों ने उस चैलेंज को जो है कबूल किया और जो काम किया, तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए वहाँ शूट के। अक्षय कुमार तक आके अपनी फिल्म सिर्फ वगैरह शूट करके गए वहाँ पे, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा इंप्रेशन और अच्छी यादें लेके गए, तो परसेप्शन टोटली
0: परसेप्शन पूरा चेंज हुआ।
1: इट्स अ फिल्म फ्रेंडली स्टेट, इट्स नॉट
0: नक्सल। और फिर जैसे कि बताया कि उसमें फिर जो युवा है उनको काम भी मिला, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ,
1: एम्प्लॉयमेंट जनरेट हमारे लोकल, क्योंकि वहाँ पे हबीब तनवीर की जो है और जो है विनोद शुक्ला जी की जो है जन्मभूमि कर्मभूमि
0: अच्छा।
1: है रायपुर, तो जो है आर्ट कल्चर और वहाँ पे कलाकार सब अच्छे थे, भाषा चूंकि हिंदी है
0: बिल्कुल,
1: तो वो जो बॉलीवुड के लिए जो एक प्राइमरी वो होता है, तो उस तरीके से था और काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अपना अच्छा माहौल बन गया। अभी ग्राम चिकित्सालय करके अमेजोन पे जो सीजन 2 आया, वेब सीरीज है, TVF ने बनाया, उसका पहला सीजन मेरे दौरान वहाँ शूट हुआ था, अभी कल ही जो है वो रिलीज हुआ उसका दूसरा सीजन
0: ओके।
1: तो बहुत अच्छी मतलब ओवरऑल इट हैज बीन अ वेरी गुड एंड फुलफिलिंग एक्सपीरियंस
0: जी,
1: एंड आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला काम करने का और आई कुड रीच आउट टू पीपल एंड आई कुड डिलीवर टू माई बेस्ट।
0: बिल्कुल सर, क्या बात है, जैसे ये तो आपने बताया अपनी जो आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है ऑफिशियल एक्सपीरियंस, जैसे कि आपका फिल्म टूरिज्म पॉलिसी प्रोड्यूसर आप रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा गहरी नॉलेज और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं।
1: इसी दौरान काफी लोग जब जर्नलिस्ट थे तब जो रब्ता हुआ कई लोगों से, फिर में कई लोगों से दोस्ती में तब्दील हो गया
0: जी।
1: जब इन लोगों के साथ बैठो फिल्म शूट करने आते हैं तो इनके किस्से कहानियां गुजारते हैं, तो बहुत सारी चीजें अच्छी जो है, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस आल्सो अपने
0: जी।
1: अच्छी चीज
0: तो सर एक चीज बताइए गौरव जी, कि ये जो फिल्म के लोग होते हैं, फिल्म एक्टर, फिल्म हीरो हीरोइंस, सर ये असल जिंदगी में ऐसे ही होते हैं जैसे फिल्मों में देखते हैं, या आपने क्या इनके साथ रह करके एक्सपीरियंस किया, आपका इंटरेक्शन रहा
1: इतना? नहीं, ये परसेप्शन की बात है, जैसे मतलब सलमान खान को बहुत लोग जो बिल्कुल लगता है उनका परसेप्शन अलग है
0: जी,
1: बट एंड ऑफ द डे इज अ वेरी शार्प पर्सन, आप कमरे में घुसेंगे वो आपको जो स्कैन कर लेगा, और मैंने तो उनके साथ मतलब मेरा सौभाग्य है कि उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान और मैंने बहुत समय गुजारा, तो ही इज डिस्कस नेहरू एंड जिन्ना ऑल्सो विद मी।
0: अच्छा।
1: तो वो मतलब ऐसा नहीं उसका जो परसेप्शन है
0: जी, जी, जी। बहुत ही
1: वाला और उस तरीके का उनका जो
0: दिखता
1: है। शाहरुख खान वैसे जो है बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल चुके हैं हंसराज कॉलेज के, उसके बाद इंग्लिश उनकी बहुत माशाल्लाह। अमिताभ बच्चन इज वेरी इम्पेकेबल, उनकी जो है चाहे
0: लिखाई
1: हो, चाहे भाषा पे पकड़ो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, उसके अलावा दूसरा मैंने मेरा एक दोस्त था बचपन का, उनके फादर दिलीप कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे।
0: अच्छा।
1: तो उस जमाने में तो हम लोग लखनऊ में जब थे बच्चे थे पढ़ते थे, तो दिलीप साहब उनको चिट्ठियां लिखते थे, मैंने दिलीप साहब की चिट्ठियां पढ़ी हैं, मतलब व्हाट कमांड ओवर इंग्लिश, सच इंपेक्टेबल इंग्लिश की जो बात करते हैं
0: जी, जी, जी, बहुत ही
1: आर्मी कैंटीन में फ्रूट कंपनी कैंटीन का मैनेजर हो के जो है, बट ये कि उनका जो एक्यूमेंट था पढ़ाई, चाहे
0: अच्छा।
1: वो उनकी उर्दू हो, चाहे आप जो उनकी शाइस्तगी हिंदी में हो, चाहे जो डायलॉग डिलीवरी में और अंग्रेजी में, तो मतलब दे आर रेयर पीपल, दे एक्चुअली

0: खाट। तो ऐसे ही है, जब आप वेन यू नो पीपल इन पर्सन और जब समय
1: तब पता
0: गुजारते तब
1: लगता है,
0: आपको उनके जो है शख्सियत के दूसरे पहलू जो है पता चलते
1: पता
0: हैं कि
1: चलते
0: भाई
1: हैं।
0: कौन कैसा है क्या है, वरना तो आप जो पर्दे पे दिखते हैं तो आप दिमाग में वही जो है कॉन्सेप्शन लेके जो है जीते हैं कि
1: जी
0: जो ये है
1: गौरव
0: वो
1: जी, यहाँ
0: है।
1: पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने मिसाल दी कि दिलीप
0: जी
1: कुमार का जो वो लिखने का अंदाज, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनका डिक्शन और
0: जी
1: उनका प्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैं आपके लिए कहना चाहूंगा आपका भी इतना बढ़िया है कि मैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना आपकी पकड़ इतनी अच्छी लैंग्वेज पर, आपकी जो कमांड
0: जरे
1: है
0: नसीब,
1: उर्दू,
0: बहुत
1: हिंदी
0: बहुत
1: और अंग्रेजी के
0: शुक्रिया।
1: लिए,
0: हाँ मैं
1: तो
0: लखनऊ
1: दैट
0: से हूँ तो
1: इज
0: इसलिए जो है थोड़ा
1: जी
0: गजल वजल का भी शौक है उर्दू
1: जी
0: का, मेरे दोस्त का मुस्लिम है, तो कोशिश रहती है कि हाँ जो भाषा है उसकी मर्यादा और उसकी जो एक लैंग्वेज का डिसिप्लिन
1: जी
0: होता है वो
1: उसको मेंटेन रखा
0: चाहे
1: जाए।
0: हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे
1: बिल्कुल
0: उर्दू हो या कोई और भी भाषा हो,
1: बिल्कुल
0: उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ऑथेंटिसिटी और ऑर्गेनिक जो है वो बरकरार रहना चाहिए।
1: जी गौरव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपसे बातें कर रहे हैं, और हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हम पहले शाहरुख के बारे में आपसे पूछेंगे,
0: बिल्कुल
1: शाहरुख के साथ आपका जो
0: बिल्कुल
1: इंटरेक्शन रहा, मिलना जुलना रहा, आना जाना रहा उनके घर पर, तो कैसे आप देखते हैं शाहरुख के साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद आता हो?
0: देखिए, जमीन से उठा हुआ आदमी है, दूसरा बिना किसी बैकग्राउंड के दिल्ली से गया एक लड़का जो यहाँ पे थिएटर कर रहा था,
1: जी
0: फौजी सीरियल किया था, दूसरा केवल किया था, और मुंबई में जाके अपना मकाम बनाना और इस लेवल पे सुपरस्टार
1: इस
0: बनना
1: लेवल पर
0: आसान नहीं है। लोग कहते हैं किस्मत, बट किस्मत से ज्यादा इस इंडस्ट्री में देखता हूँ कि मेहनत बहुत है,
1: बिल्कुल
0: बहुत मैटर करती है। मतलब आप ये इट्स नॉट अ कैजुअल जॉब
1: एग्जैक्टली
0: आपको, मैं तो सलमान खान यूपी में जब मैं था उपाध्यक्ष तो ये लाए
1: जी
0: थे शूट करने सुल्तान के, मुजफ्फरनगर में किया था।
1: अच्छा
0: अब गर्मी में शूट किया उन्होंने, मैं देख रहा हूँ मतलब रीटेक हो रहे हैं लेकिन धूप में खड़े हैं, लाइटें लगी हुई हैं, 200-250 का क्राउड है, सारे जो क्रू है, लेकिन उफ नहीं किया। सेम शाहरुख के मैं ओम शांति ओम के सेट पे गया, मैंने एक बार
1: अच्छा
0: आगे फराह खान ने मुझे बुलाया था तो उनका भी एक शॉट था। अब वो 10 टेक हुए उनके, लेकिन मैं देख
1: दस
0: रहा था
1: टेक
0: उस 10 टेक में जो एनर्जी लेवल यहाँ पे था उनका 10 पे,
1: जी
0: वो 10 नंबर पे रहा और गिर के कभी जो है 6 या 7 या 8 पे नहीं आया। तो ही इज सो एनर्जेटिक
1: कंसिस्टेंट
0: एंड मतलब
1: जी
0: वही आपकी मेहनत, अमिताभ बच्चन के भी डिसिप्लिन की जो बात की जाती है,
1: जी
0: मतलब उनको आप टाइम दीजिएगा कॉल टाइम 6 बजे तो वो पौने 6 बजे मेकअप वेकअप लगा के आके सेट
1: रेडी
0: पे
1: मिलेंगे।
0: रेडी आएंगे।
1: अच्छा
0: तो ये कमिटमेंट और डेडिकेशन किसी भी काम में, कोई भी फील्ड हो, जब तक
1: जी
0: आप में वो जो पैशन नहीं होगा ना, और ये
1: पैशन
0: पार्ट
1: डेडिकेशन
0: है, तो आप जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते
1: जी
0: हैं।
1: सर,
0: बाकी
1: हम
0: किस्मत जो
1: जनरली हम सुनते थे, मैगजीन से पढ़ा करते थे, आजकल तो ऑडियो विजुअल के मीडियम से हम जानते हैं कि बहुत टैंट्रम्स होते हैं हीरो हीरोइंस के, और बहुत
0: अब
1: ज्यादा
0: तो बहुत, मैं भी बहुत किस्से अब नए जो
1: जी
0: जनरेशन है सुनता हूँ कि वो 4 वैनिटी वैन चाहिए,
1: जी
0: जिसमें एक जिम होगा और एक इसमें उनका अपना होगा, फिर साथ में एक डायटिशियन चलेगा, फिर
1: हाँ हाँ
0: सोशल
1: हाँ
0: मीडिया
1: उनके
0: मैनेजर,
1: असिस्टेंट की लाखों
0: आठ
1: खर्चे होते
0: आठ
1: हैं
0: नौ नौ जो है स्टाफ चलता है। ये मतलब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट आई नो इन
1: जी
0: पर्सन ये चीजें होने लगी। पहले लोग था कि प्रोड्यूसर को, चाहे धर्मेंद्र जी हो या पुराने एक्टर, तो प्रोड्यूसर का दर समझते उन पैसा है तो चलो नहीं ये फीस नहीं ली, फिल्म चल जाएगी तब कर लेते
1: तब
0: हैं
1: कर लेंगे
0: बनाओ, बिकॉज पैशन
1: जी
0: वॉज सिनेमा, वो
1: एग्जैक्टली
0: करना है पहले चीजें।
1: जी पैसा बाद
0: तो
1: में
0: नाउ कमिंग बैक टू शाहरुख, जो
1: जी
0: किस्सा मैं बताना चाह रहा था कि उनका एक फिलैंथ्रोपी वाला जो है, मैं जानता हूँ उन्होंने, एक बार मैं मन्नत उनके घर गया था तब बातचीत में बताया था
1: जी
0: कि कहले, मैं शाहरुख बता रहे थे कि अपने घर मन्नत जब वो जा रहे होते तो रास्ते में वहीं पे जूम में उनके घर के पास बैंड स्टैंड के पास एक लड़का था जो हैंडीकैप था और वो हैंड साइकिल पे दिखता था, हाथ वहाँ हिलाता तो ये भी उसको वेव करते थे, तो
1: जी
0: मतलब रोज आने जाने में एक तरीके से कह दीजिए कि जो है जान पहचान
1: जान
0: सी हो
1: पहचान सी हो
0: गई
1: गई
0: थी वो उसकी।
1: जी जी
0: एक दिन करेंगे हमने देखा कि वो जमीन पे पड़ा हुआ और उसकी वो साइकिल रिक्शा नहीं, तो मैंने गाड़ी रोक के पूछा क्या हुआ, तो बोला कि वो कुछ लड़के थे उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा रिक्शा छीन के ले गए। तो उनका अच्छा ठीक है, तुम देखो इन सब चीजों मत पड़ना लड़ाई झगड़े में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखो, कुछ अच्छा काम करो, मैं तुमको पैसे देता हूँ, मैंने तुम नया रिक्शा खरीद लो। तो चारों मिला गेव हिम सम मनी जो भी था एंड वो नया ले। अगले दिन देखा ही वॉज हैप्पी विद हिज न्यू दिस थिंग एंड ही वॉज सेलिंग समथिंग, उसमें जो कुछ बेच
1: ओके
0: रहा ठीक। खैर एक महीने बाद देखा मैं फिर उधर से निकला था, अब तो देखा फिर वो सड़क पे जमीन पे आ गया और अजीब सा मतलब दुखी उदास। तो मैंने फिर पूछा कि ले सर फिर वही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ इस तरीके का, और तो कहने अरे क्यों हो रहा तुम्हारे साथ अजीब, कहने तुम उन लोगों से दूर रहो तुम अलग रहो। और शाहरुख कहने के मैंने दोबारा उसको फिर हेल्प करी और उसको कहा तुम नया लो, फिर उसने नया ले लिया, देखते रहे। फिर 4-6 महीने गुजर गए, देखा फिर देखा कि वो रिक्शा गायब,
1: फिर वही सिचुएशन।
0: तो उस दिन कहले मेरे साथ कोइंसिडेंटली जो है चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे, जोहान पांडे के फादर, वो साथ में थे, इनके
1: अच्छा
0: परिचित थे। तो कहले यार इसको मैंने रिक्शा दिलाया दो बार अभी, फिर कहले अरे शाहरुख भाई आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो गलत हरकतों में लगा, आप देते ये जाके बेच आता है और फिर जो है
1: वहीं पहुंच जाता है फिर आपसे
0: चीजों का जो है फिर जो आपसे उस तरीके तो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो कहले मुझे एक पल बुरा लगा कि कोई मुझे जो बेवकूफ बना रहा है, मैं अपने को बहुत शार्प होशियार समझता था आदमी की पहचान कह, लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख उसे उस बात का हुआ कि आज तुमको एक मौका था, मैंने किया या किसी और मेरी जगह होता हेल्प करता तुम्हारी सेल्फ हेल्प, तुम एक जिंदगी अच्छी बेहतर बना सकते, कहा तुम गर्त में ही जाओगे। तो कहने वो मुझे बहुत अफसोस की बात लगी कि जो है मतलब मेरी मदद का फायदा नहीं ले पाया, मैं बेवकूफ बना तो मुझे क्या फर्क पड़ता कुछ पैसों से,
1: बिल्कुल, लेकिन असल नुकसान उसका हुआ। लेकिन उनके और भी आपने जैसे बताया कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मदद करते थे,
0: उन्होंने एक्चुअली क्या ही हैड लॉस्ट हिज फादर अर्ली, फिर उनकी मदर बहुत बीमार थी, उनको शायद कैंसर वगैरह था दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने मतलब उस दर्द को समझाया कि कई बार ताकि मेरी मदर के लिए हमको उनके इंजेक्शंस वगैरह काफी महंगे लगते थे और उसमें हमें अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा था उस समय। तो कहने फिर मैं तो वो मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं मेरे वो दर्द
1: महसूस करते थे वो दूसरों का।
0: हाँ, फिर जब मैं बॉम्बे आ गया मदर की डेथ के बाद और सक्सेसफुल हो गया तो मेरा था कि चलो अगर किसी की मैं मदद कर सकूं, जिंदगी बचा सकूं इस फाइनेंशियल में तो मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो कहने एक दिन मैं सेट पे था किसी, तो मैं अखबार पढ़ रहा था तो इस अखबार में किसी छोटे बच्चे की कोई अजीब सी बीमारी थी जो बहुत क्रिटिकल था वो छपी थी। तो मैंने अपने मैनेजर कहा कि भाई जस्ट रीच आउट टू देम, वी शुड हेल्प हिम, उसकी जान बचानी कैसे भी करके। तो कहले अब मैनेजर ने उनको डॉक्टर उनको हॉस्पिटल वही रिपोर्टर के थ्रू जो खबर छपी थी कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। उसके फादर जो उनको लगा कि मेरे साथ कोई मजाक प्रैंक कर रहा है, शाहरुख खान के ऐसे फोन कैसे आ सकता है, वो तो मैं जानता ही नहीं, मतलब मिडिल क्लास ऐसे बेचारा,
1: बिल्कुल बिल्कुल कोई
0: कहले। उस पूरे चक्कर में एक हफ्ता निकल गया टू रीच आउट टू हिम।
1: अच्छा,
0: पहले एक हफ्ता जब मेरा उसे कनेक्ट हुआ उसने मुझे डॉक्टर से मिलवाया तो डॉक्टर सेड कि शाहरुख साहब हमको देर हो गई, अगर हफ्ते 10 दिन पहले जो है ये मदद आ जाती है आपकी तरफ से वी कुड हैव सेव्ड द चाइल्ड। तो कहने आई फेल्ट सो बैड कि मतलब मुझे अपनी स्टारडम की ये कीमत चुकानी पड़ रही है कि मैं स्टारडम में आज मैं मदद करने की स्थिति में बट आज मैं अपने स्टारडम की वजह से वो आदमी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा, लग रहा था कोई मजाक कर रहा और मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया। तो कहने मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज का क्योंकि वो दर्द मैं जानता था अपने को बिछड़ने का, लेकिन कहें दैट इज लाइफ, मतलब वो कटेगी बट दैट इज नॉट डिटर्ड मी, तो मैं अब कोशिश ज्यादा ये करूंगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं
1: टाइमली लोगों को मदद कर सकूं।
0: ये उनका शख्सियत का पर्सनालिटी का एक हिस्सा जो बहुत शायद मैं प्रिवी था उन्होंने मुझसे डिस्कस किया।
1: हाँ, आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। फिल्म एंड टूरिज्म पॉलिसी प्रोड्यूसर और बहुत डीप नॉलेज रखने वाले फिल्म इंडस्ट्री की बॉलीवुड की गौरव द्विवेदी हैं हमारे साथ आज के आशियाना में हमारे स्पेशल गेस्ट। और सर हमने बात की शाहरुख के बारे में, आपने बताया इतनी इंटरेस्टिंग बातें, हम आगे आपसे जानेंगे अक्षय अमिताभ साहब के बारे में भी और कुछ किस्से और भी आपने जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो भी हम जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। तो फिलहाल शाहरुख की ही इस फिल्म से जिसे आपने अभी बात करी तो आज जो है वही हमारा अपना है, आने वाला कल तो एक सपना है। शाहरुख की फिल्म से आपका फेवरेट ये गाना कभी।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेन बबर प्रोग्राम आशियाना चल रहा है, आप हैं शाहिद के साथ। और आज के आशियाना में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्री गौरव द्विवेदी, जो हैं फिल्म एंड टूरिज्म पॉलिसी एडवाइजर और बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की। गौरव जी, एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी रेन बबर हमारे प्रोग्राम आशियाना में।
1: शुक्रिया।
0: और हम बात कर रहे थे शाहरुख के बारे में, आपने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं और जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी जिंदगी को आपने बहुत करीब से देखा है। आपने बताया आप शाहरुख के बाद सलमान के बाद, हम जानना चाहेंगे अमिताभ साहब का भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है और फिर साहिर साहब का और जावेद अख्तर का भी, तो वो जरा बताइए।
1: जी, अमिताभ जी का किस्सा ये कि उनको पहली फिल्म मिली थी साथ हिंदुस्तानी, जो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने डायरेक्ट की थी,
0: वो शायद डेब्यू फिल्म थी उनकी,
1: पहली फिल्म थी। तो काफ़ी अरसा गुजर गया, मतलब अमिताभ बड़े स्टार बन गए, सुपरस्टार। तो एक दिन को खबर मिली कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की जो तबीयत जो नासाज है, ठीक नहीं है, ही इज़ गोइंग थ्रू अ रफ पैच। तो उन्होंने अपने भाई अजिताभ को, जो बंटी जिनका नाम था, उनको बुलाया कि नहीं तुम जाओ ख्वाजा साहब से मिलो और हमको उनकी मदद करनी, उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट अपने तरीके से, लेकिन बहुत खुददार है तो ऐसा नहीं लगे कि हम लोग जो है कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो खैर बंटी जो उनके घर गए, जो मुंबई में JW मैरियट होटल के सामने जुहू में उनका घर था पुराना, और बात की कहने की, तो उन्होंने पूछा ख्वाजा साहब ने, बंटी कैसे आना हो, तो बोले नहीं सब इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा आपकी जो है खैर पूछते चलो कि जो क्या है, तो बोले नहीं बस थोड़ी तबीयत ठीक है। तो बातचीत हुई और बंटी जो अजिताभ बच्चन ने चुपचाप एक पैकेट जो है वो छोड़ के चले आए। थोड़ी देर बाद अमिताभ जी के पास फोन आया ख्वाजा साहब का, कहने भाई बंटी आया था अमिताभ और अपना कुछ सामान भूल गया। अमिताभ जी को बहुत वो लगा, कहने लगे कि नहीं देखिए ख्वाजा साहब, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा है, आपकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपकी खुददारी को जो है किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करूँ, तो आप ये उधार मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, आप इलाज कराइए, आप स्वस्थ हो जाइए, वो हमारे जाम, मैं आपसे फिर बाद में ले लूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने मदद करने की जो कोशिश करी, उनका भी बड़प्पन था अमिताभ बच्चन का,
0: बिल्कुल
1: उन्होंने भूले नहीं अपने,
0: भूले नहीं। और ऐसी अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो साहिर लुधियानवी जो बहुत बड़े पोएट थे, लिरिसिस्ट,
1: साहिर का तो मतलब कमाल के थे, मुझे लगता है कि जो है फिल्म लिरिसिस्ट के तौर पे मतलब साहिर लुधियानवी से बड़ा कोई शख्सियत हुआ नहीं, उसके बाद नंबर दो अगर किसी तो मजरू सुल्तान थे।
0: अच्छा।
1: जो होने चाहिए। तो साहिर साहब का था कि बहुत मस्त मौला फक्का टाइप के थे और लोगों की मदद बहुत करते थे, तो उस समय जावेद अख्तर और बहुत सारे नए नए सिंगर जो है ना, जो लिरिसिस्ट और
0: नए नए आ रहे होंगे इंडस्ट्री में,
1: इंडस्ट्री में तब स्ट्रगल कर रहे थे, तो साहिर साहब रहते थे, तो वो चले कभी कोई मिलता था पूछ लेते थे क्या किसी की जेब में पैसे डाल दिए, कि चलो अच्छा लिखो और जो है चिंता मत करना और जो है पैसे की नहीं, करते रहो, बढ़िया काम करते रहो। तो ऐसे उन्होंने जावेद अख्तर को एक बार उसमें मांगा, उन्होंने 200 रुपये उनको दिए थे। अब बात आई गई हो गई, फिर एक दिन खबर आई कि जो है साहिर साहब की डेथ हो गई।
0: अच्छा।
1: है, वो नहीं रहे, और तो जावेद अख्तर जो है उनके पहुंचे वहां पे जहां उनका क्रिमेशन हो रहा था कब्रिस्तान में।
0: अच्छा।
1: और उनके मन में मलाल रह गया कि उन्होंने दिया था, मैं भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो पैसे लौटा नहीं पाए। एक दो बार उन्होंने बात करी, उनका अच्छा ले लेंगे।
0: अच्छा।
1: जैसे भी वो पहुंचे कब्रिस्तान में, मट्टी वट्टी उन्होंने कम की, देखा एकदम से साहिर साहब के एक और दोस्त थे, वो बहुत बौखलाए उसे, दूसरे कह रहे यार वो देखा कि ऐसे कपड़ों में नाइट सूट में आ गए थे और वही सब सारा जो क्रियाकर्म वगैरह करा रहे थे। तो वो जावेद से बोला यार सुनो कुछ पैसे रखे हो, तो कहने क्या हुआ, कह रहे वो जो कब्र बना रहे थे ना उसको देने हैं पैसे साहिर साहब, मैं जल्दी में आ गया तो मेरे पास, तो बोले कितने पैसे, कह 200 रुपये।
0: अच्छा।
1: तो 200 रुपये जावेद साहब ने जो वापस किया, तो लगा कि वो दिस दैट सर्कल हैड कम टू अ फुल एंड।
0: एग्जैक्टली।
1: उन्होंने 200 रुपये कभी लिए थे,
0: जी जी जी जी
1: थी वो सारी चीजें, वो
0: इस तरह से उनके कब्र बनाने,
1: कब्र में आखिर में जो है जब उनके जो इंतकाल हो गए उसके बाद उसको कब्र बनाने वाले को जो फिर जावेद अख्तर साहब ने जो वो 200 रुपये
0: दिए।
1: और साहिर बहुत परफेक्शनिस्ट थे, यश चोपड़ा जी से मेरी वहां मुलाकात हुई तो बताते थे कि कहानी लिख के मतलब गाना लिख के ले आते थे, लेकिन वो 99.99% होता था।
0: अच्छा।
1: तो देते नहीं थे, जेब में रख के देते, कहले इसमें 0.01% अभी कमी है, तो कहले अरे आप छोड़िए साहिर साहब। फिर ऐसे सवाल करते थे, कहले कि जो भाई कभी कभी अमिताभ बच्चन जो बिजनेसमैन हो गया, तो ये तो तिजारती आदमी शायरी कैसे कर सकता है।
0: अच्छा।
1: तो फिर यश चोपड़ा कहते अरे आप छोड़िए ना, फिल्म मेकर मैं हूँ, मैं कैसे करूँगा सारी चीजें। जावेद साहब का जो शायरी है, चूंकि उनके जानिसार अख्तर के बेटे थे और वो थे मजाज के जो है भांजे थे मजाज लखनऊ, तो उनका हमेशा था गाना लिखने का। तो हुआ कि जब सिलसिला की शूटिंग शुरू हुई तो उसी समय जो साहिर साहब की डेथ हो गई, वरना उससे अच्छा। पहले त्रिशूर, दीवार, काला पत्थर और जितनी भी सारी ज्यादातर फिल्में यश चोपड़ा की जो उन्होंने साहिर साहब ने लिखी थी। तो उस मौके को देखते हुए जावेद अख्तर ने जो है यश चोपड़ा बोला कि मुझे गाना लिखना है और आप मुझे मौका दीजिए जो मैं उनकी जगह रिप्लेस करूंगा
0: सिलसिला के लिए।
1: तो फिर वहां से उनकी शुरुआत एज ए लिरिसिस्ट हुई। तो देखा ख्वाब तो ये सिलसिले वो सारी चीजें लिखी।
0: ठीक, ठीक, ठीक।
1: उसी में था कि रमन कुमार जो है वो असिस्टेंट थे यश चोपड़ा के।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने उसके बाद जो है बनाई फिल्म साथ साथ, तो वो जावेद साहब के पास पहुंच गए कि आपने उनके लिए गाना लिखा, मैं तो असिस्टेंट, आप रोज मुझसे मिलते सर, अब आपको साथ साथ के भी, तो मैं साथ साथ के भी सारे जो है
0: गाने लिखे।
1: तुमको देखा तो ख्याल है जिंदगी धूप तुम गाना साया।
0: अच्छा।
1: तो दिस इज हाउ इज लिरिसिस्ट जर्नी स्टार्टेड।
0: अच्छा, जावेद अख्तर
1: उन्होंने मतलब सलीम जावेद वाली जो जोड़ी जब टूटी तो देन फ्रॉम राइटर ही बिकेम अ
0: लिरिसिस्ट फुल टाइम पोएट। जी तो गौरव जी ये तो सब बातें हो गई और हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है, तो चलते चलते हम आपसे और जो बाकी लोगों के साथ जो आपके रिलेशंस रहे, आपके एक्सपीरियंसेस रहे, मनोज कुमार साहब का आपने बताया और
1: मनोज कुमार साहब के साथ बस मैं वही मैं से मिलता था। एक्चुअली मेरे घर भी आए थे, मेरे फादर कानपुर मीडियम सिटी थे।
0: अच्छा।
1: तो उस समय उनकी फिल्म जो है क्रांति रिलीज हुई थी, तो यूपी चूंकि उस समय बहुत बड़ा जो है एग्जीबिशन का वो था ट्रेड, काफी सिनेमा हॉल होते थे
0: जी,
1: तो ही हैड गुड रैपो विद माय फादर। तो उन्होंने किस्सा बताया कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मनोज जी को एक बार बुलाया और ये बोला कि भाई मनोज मेरा एक नारा है जय जवान जय किसान, इस पे तुम कुछ करो।
0: अच्छा।
1: तो कहने मैं ट्रेन से आया दिल्ली से बॉम्बे, रात भर में सोया नहीं, डायरी लिखी मैं लिखा, जब मैं सुबह आया तो मेरे पास उपकार की कहानी तैयार थी।
0: क्या बात है।
1: सो दैट वाज हिज ट्रिब्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर या देश के लिए जो उन्होंने जो
0: जी जी जी जो नारा था जय जवान जय किसान, क्या बात है। और बहुत ही सुना शानदार और बहुत ही बड़ी हिट फिल्म थी वो।
1: तो इस तरीके की चीजें हैं जो लोगों की जो जहन में थी याद रह जाती।
0: और सर आप हमारे साथ आज के आशियाना में जुड़े और इतने आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई, आपका आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। तो गौरव द्विवेदी हमारे साथ रहे आज के आशियाना में, जो कि बहुत ही फेमस फिल्म एंड टूरिज्म पॉलिसी एडवाइजर और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। हम एक बार फिर से उनका धन्यवाद करेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि यार मैं मौका जो इतने प्रेस्टीजियस अभी 90 साल हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी ने अपने 90 साल जी।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: जी थैंक यू सर, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
2: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
3: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
2: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
3: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
2: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
3: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
2: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
3: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
3: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
3: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
3: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
3: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
3: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
3: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
3: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
3: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
3: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
3: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
3: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
3: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
3: अच्छा
7: जी।
3: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
3: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
3: गिजू भाई के अनुसार
6: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
3: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Dragoban
4: 103 MHz.
3: News, music and entertainment. FM 103 MHz.
5: जी हाँ, अपना कन हुनिया से आकाशवाणी FM Dragoban 110 MHz उन्हें ढगा सब बिल्लाक अपना खन सब के स्वागत करे से अपनी पसंद गाना SMS request हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम दे। जी हाँ, আপনার খান লাডিন আছে, SMS রিকুয়েস্ট আছে, আপনার খান লিখি কিনা পাঠাই দিবি, কিন্তু লিখিয়া সময়তে যি হলিবি ফিল্ম লাগা নাম আর গানা যুন্তু আপনার খান শুনবলে কারণে ইচ্ছা আছে, গানালা টাইটল ঠিকঠাক লিখি কিনা পাঠাই দিবি, তেতিয়া মই ইয়াতেপরা আপনার খানলা পছন্দিতা গীত খান বাজাই দিয়া হব। তো মই আপনার খান লাগা মেসেজেস রুখি থাকিব, এইটু সময়তে শুনব। টু স্টেটস ফিল্ম কি গীত গাই আছে আদিতি সিং শর্মা আর অমিতাভ ভট্টাচার্য।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टूगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे

0: इतने शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध

0: राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड 19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हिन्दी फिल्म गीत प्रोग्राम टे शुनी थका सब बेलाख्या को स्वागत कर प्रोग्राम सबसे पैला टे कीर्ति और अपेक्षा लगा आवाज टे जुबान फिल्म शुनिले प्रोग्राम बार दूसरा गीत दी आस नौ टंकी साला फिल्म की गीत गाय से नितिन मुकेश

अनुष्का मनचन्दा लगावस्ते जिन्दगी रॉक्स फिल्मत हुनेले प्रोग्रामत एबार दुसरा गीत दिएसे जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म की गीत गाएसे सुरज जगन आरो जॉय बरुआ।

साथी फिल्म की गीत लगत आकाशवाणी एफ एम ट्रेगबन 110 मेगाहर्ट्ज पर आज कारण हिंदी फिल्म गीत प्रोग्राम दिया शेष कर दी आम खानक हम आहिया कल फजी 6 बजे शुनी थका सब बिल्कुल गुड नाइट।